अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल प्रवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या न जाए आख आख रहे लिवला।

जुजुगे को वेश। एका माई युक्त व्याई तन चेले प्रवान, एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीबान। जिवत सपावे तवे चलावे, जिव होवे फुरमान। ओह वेखे ओना नजर ना आवे, बहुता एहो विडान। आदेश तिसै आदेश, आदा नीला नादा नाहत, जुजुगे को वेश। आसन लोए लोए पंडार, जो किछ पाया सो एका वार। कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश, आदा नीला नादा नाहत, जुजुगे को वेश। एक दूजी बहु लख हो हे, लख होवै लख वीस। लख लख गेड़ा आखीऐ, एक नाम जगदीश। एत राहे पद पवड़िया, चढ़िया होए अकीस। सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस। नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ै ठीस। आखण जोर चुपै न जोर, जोर न मंगण देण न जोर। जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राजमाल मनसोर। जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुट्टै संसार। जे साथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तिस विच जी जुत के रंग, तिनके ना माने का अनंत। करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच प्रमाण, नदरी कर्म पवै निशान।

ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद को डयानंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे कारत करी है बहुत अनूप ताकियां गल्ला कथिया ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़िए सुरां सदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मैं राम रहा भरपूर।